संत चोखामेळा की भक्ति रचना आप सुन रहे थे उदयन काळे के स्वर में। कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है मालती पांडे ने।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी ने गायी हुई एक भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी ने गाई हुई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त करते हैं।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: आप सुन रहे हैं है पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन। आपके साथ तबले पर श्री सोहन लाल मिश्रा साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मारो।
1: यू आर लिस्निंग टू सितार रिसाइटल बाय पंडित बुधादित्य मुखर्जी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री सोहन लाल मिश्रा। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसन टू राग मारू।

0: अब तक आप सुन रहे थे पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का हिंदुस्तानी सितार वादन। आपके साथ तबले पर श्री मुकुंद भाले साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया।
1: यू वेर लिस्निंग टू सितार रिसाइटल बाय पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री मुकुंद भाले। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आकाशवाणी धारवाड़ एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: आप सुन रहे थे श्रीमती गीता जावड़ेकर का गायन। आपके साथ तबले पर श्री शंकर कौड़ी मट्टी, हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे श्री परमेश्वर हेगड़े का गायन, राग शंकरा। ख्याल रूपक ताल अनाहत नाद, द्रुत तीन ताल ऐसो धी टलंगर।
1: You are listening to vocal recital by Shrimati Geeta Javadekar. She was accompanied on tabla by Shri Shankar Kavdi Matte, harmonium by Shri D. Kumaradas. Continuing the concert, now listen to vocal recital by Shri Parmeshwar Hegde, Rag Shankara, Khyal Rupak Tal, Anahat Nad, Drit Tintal, Aiso Dheet Langara.

0: अब तक आप सुन रहे थे श्री परमेश्वर हेगड़े का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित रघुनाथ नाकोड, हारमोनियम पर श्री वसंत कनकापुर साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय श्री परमेश्वर हेगड़े। ही वाज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित रघुनाथ नाकोड, हारमोनियम बाय श्री वसंत कनकापुर। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आकाशवाणी धारवाड़, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं कोयल दास गुप्ता. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इमोन सरकार. तो आइए सुनते हैं राग बैरागी में ख्याल गायन, कलाकार कोयल दास गुप्ता.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ ख्याल इन द राग बैरागी. आवर आर्टिस्ट इज Koyal Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to A Khayal in the Rag Bairagi. Our artist, Koyal Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी कोयल दास गुप्ता। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इमोन सरकार। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में धमार। आज ही कलाकार हैं शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज प्रसंगत कर रहे हैं अपूर्व लाल मन्ना। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में धमार, कलाकार शिवली चक्रवर्ती।
1: You were listening to a khayal in the raag Bairagi. Our artist was Koel Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla was Imon Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present Adhamar. Listen to Adhamar in the raag Bilash Khani Tori. Our artist is Shivli Chakraborty. Accompanying her on the Pakhavaj is Apurbalal Manna. Listen now to Dhamar in the Raag Bilash Khani Tori. Our artist, Shivli Chakraborty.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलास खानी तोड़ी में धमार सुन रहे थे। कलाकार थी शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे अपूर्व लाल मन्ना। ये है रागम।

0: चौबीसों घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ धामर इन द राग बिलाश खानी टोरी। आवर आर्टिस्ट वॉज शिवली चक्रवर्ती। अकम्पनिंग हर ऑन द पखावज वॉज अपूर्वलाल मन्ना। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संध्या काथोटे का उपशास्त्रीय गायन. संध्या काथोटे अपने गायन का प्रारंभ पीलू ठुम से कर रही है. बोल बरसन लागी बदरिया पिया बिन लागे ना मोरा जिया. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय संध्या काथोटे. शी प्रेजेंट्स पीलू ठुमरी. बोल बरसन लागी बदरिया पिया बिन लागे ना मोरा जिया.

ये थी पीलू ठुमरी। संध्या काथवटे अब प्रस्तुत करती है मिश्र भैरवी ठुमरी। बोल डारो ना डारो मोपे रंग सुनो सुनो। दैट वॉज पीलू ठुमरी। संध्या काथवटे नाउ प्रेजेंट्स मिश्र भैरवी ठुमरी। बोल डारो ना डारो मोपे रंग सुनो सुनो।

ये थी मिश्र भैरवी ठुमरी। आप सुन रहे हैं संध्या काथवटे का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं नीलेश जाधव, सारंगी पर संगति कर रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ और हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं विनोद पड़गे। अपना गायन जारी रखते हुए संध्या काथवटे अब प्रस्तुत करती है मिश्र खमाश ठुमरी, बोल बाली उमरिया लरकैया। You are listening to light classical vocal recital by Sandhya Kathavte. She is accompanied on tabla by Nilesh Jadhav, on sarangi by Ustad Farooq Latif and on harmonium by Vinod Padge. Continuing her light classical vocal recital, Sandhya Kathavte now presents Mishk Hamaj Thumri, Bol Bali Umariya Larkaiya.

ये थी मिश्र खमाश ठुमरी। संध्या का थोटे अब प्रस्तुत करती है किरवाणी ठुमरी। बोल तुम बिन मोरा जिया ही लागे। दैट वॉज मिश्र खमाश ठुमरी। संध्या काथवटे नाउ प्रेजेंट्स किरवाणी ठुमरी। बोल तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे।

ये थी किरवाणी ठुमरी। आप सुन रहे थे संध्या काथोटे का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे नीलेश जाधव, सारंगी पर संगति कर रहे थे उस्ताद फारूक लतीफ और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे विनोद पड़गे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज किरवाणी ठुमरी। यू आर लिसनिंग टू लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय संध्या काथोटे। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय नीलेश जाधव, ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूक लतीफ एंड ऑन हारमोनियम बाय विनोद पड़गे। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam D47 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित का गाया राग वाली. मध्य लय ख्याल छप ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present for you a vocal recital by Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit. He first presents Rag Bhopali, in which you will hear a composition set to Madhyalay Jhaptal, followed by a composition set to Dhrut Teental. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने। और लीजिए अब सुनिए राग शंकर। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने।
1: दैट वॉज राग भूपाली कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit next presents Raag Shankara, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Tilwara Taal, followed by another composition set to Drut Teen Taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: अभी आप पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित का गाया राग शंकरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग शंकरा एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित। ही वॉज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द संगीत बाय घनश्याम सिसोदिया। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम DTH चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुने पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी वादन, प्रस्तुत है राग पूरिया। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music. Listen to Hindustani Classical Flute Recital by Pandit Nityanand Haldipur. Presenting Rag Puriya, Vilambit Gat set to Ektal and Drut Gat set to Teental.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग पूरिया सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सदानंद नायमपल्ली। अब सुनिए पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत, मध्यलयगत झप ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You're listening to Ragpuriya by Pandit Nityanand Haldipur on flute. Accompanying him on tabla was Pandit Sadanand Nayampally. Continuing the concert, now listen to Rag Hemant on flute by Pandit Nityanand Haldipur. Madhyalaygat set to Jhaptal, Drutgat set to Teental.

0: अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे ओंकार गुलवाड़ी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वॉज ओंकार गुलवाड़ी। This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन सुनेंगे. कलाकार हैं साकेत साहू. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनिरुद्ध मुखोपाध्याय. तो लीजिए, प्रस्तुत है साकेत साहू का राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्वरी. आवर आर्टिस्ट इज साकेत साहू. Accompanying our artist on the tabla is Aniruddha Mukhopadhyay. Listen now to the violin in the rag Bageshri. Our artist, Saket Sahu.

0: अभी आप राग बागेश्री पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे साकेत साहू। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको झपताल पर तबला वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाखा मुखोपाध्याय। तो लिए प्रस्तुत है झपताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वॉज साकेत साहू। Accompanying our artist on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Jhaptal. Our artist is Gauri Shankar Kormakar. Accompanying him on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay. Listen now to the tabla in Jhaptal. Our artist, Gauri Shankar Kormakar.

0: अभी आप झपताल पर गौरी शंकर कर्मकार से तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाखा मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Gauri Shankar Karmakar. Accompanying him on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

Come on, buddy.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्यामलाल और साथी का शहनाई पर बजाया राग अभोगी। विलंबित गत एक ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज रागम। टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट यू शहनाई रिसाइटल बाय श्यामलाल एंड पार्टी। रिसाइटल इज इन राग अभोगी। विलंबित गत इज इन एक ताल एंड द्रुत गत इज इन तीन ताल।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। ये था शहनाई पर बजाया राग आभोगी। कलाकार थे श्यामलाल वसाथी। और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल इन राग आभोगी रिसाइटेड बाय श्यामलाल एंड पार्टी। We now present Shehnai recital by Ustad Ali Hussain and Party in Raag Bageshri.

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली हुसैन व साथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री। रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music। दिस प्रोग्राम वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संतूर वादन. कलाकार है श्री सिद्धनाथ मिश्रा. सबसे पहले आप बजाएंगे राग बसंत मुखारी. विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सनी न्याजी. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टूडे वी आर प्रेजेंटिंग संतूर रिसाइडल बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा. फर्स्टली He is presenting Raag Basant Mukhari. Both the compositions are set to Teen Taal. Accompanying him on tabla, Sani Niazi.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग बसंत मुखारी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग चारुकेशी। तबले पर संगति दी है सनी नियाजी ने। विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल पर निबद्ध है। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग बसंत मुखारी बाई सिद्धनाथ मिश्र। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला सनी नियाजी। Both the compositions set to Teen Tal.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग चारुकेशी। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ यू आर लिसनिंग राग चारुकेशी बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा।
1: अब आपके सामने प्रस्तुत है पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट पखावज वादन by Pandit Raj Khushiram. He is presenting Mohan Tal and accompanying him on Sarangi, Vinod Kumar Mishra.

रंगी वर्णन प्रस्तुत है। इसमें छह प्रकार की लयों का वर्णन किया गया है। टिट कत ग ही ग धा तिट धा तिट धा धा तिट किट धा तिट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट तगिन धा तगिट तक तक धगिट धग दिन धगिट धग दिन धगिन धा किट तक दिगन न किट तक तकिट थुकिट तक धाधिकिट धिकिट तक धा धान धिकिट तकिट थुकिट तकिट थुकिट दिगन लान धगिट धान

प्रस्तुत है नव दुर्गा परन। इसमें नौ देवियों के नाम आए हैं और गुरु कृपा से ये स्वनिर्मित है। दुर्गे दुर्ग तिहारणी माता दिधान तान धा धाता शैल पुत्री जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलन त्रयतापहारणी गदिगण धा चंद्र घंटा गणन गणन घन घनात घनन घन कुष्मांडा गदिन धान धान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय क्रां त्रिगृतिकता तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमाधा महिमाधा लघिमाधा त्रिगृतक ईशत्वधा वैश्वत्वधा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमितत्वधा धा धा

फल तांबूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर करधर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धाद्रि कृतिगण जय बा जय ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा धा धा धा धा धा धा

अभी आप सुन रहे थे पंडित राज खुशीराम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग मोहन ताल ऑन पखावज बाय पंडित राज खुशीराम। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी. ही इज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय रफीउद्दीन साबरी. प्रतीक चौधरी फर्स्ट प्रेजेंट्स राग गुर्जरी तोड़ी.

0: अभी आप सुनिए प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध संग। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग गुर्जरी तोड़ी। प्रतीक चौधरी कंक्लूड्स सितार रिसाइटल विद राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।